आचरे सब सस मावे रिग कह रहे भरभूर राम नाम देवा में सुना लिया प्रचित जाए तो मुख अंतर बाय जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम।

ले कपड़े प्यारे तुरक पठानी अमल किया जा रे वे सचिया पड़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी

सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मोच ओए जे आवे आस कर जाय नरासे के फल फिके फल बक बके कम ना

0: लख चोरियां लख जारिया लख गा लख ठगिया पहना मिया रात दिन सजी लाल तक पाव कते बामन बटे आए खाए सब को आखे पाए हुए पराना सुटिए पी फिर पाई हो नानक तक न टुटे जे तक हो वे जोर महला पहला
1: नाए मनिया पति पूजे सलाही सच सूत दरगेंद्र पाये तग न तोड़ सकोत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक बैन ताड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तग गाया पे वते वट तग अवरा कते पाड़ करे व्या हो कड़ कागल दसै

गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तर न जाई पोती टिका तै जप माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯੂਨਿਟਸ, 73 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਟੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं

0: की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਮੇਰੇ ਵੇਬ 347.6 ਮੀਟਰ ਯੂਨਿਟਸ 73 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटीं, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा

का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंपकर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

फरमाई था। ग्यारह बज के पांच मिनट से तुसी सुनोगे प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। दिने बारह बज के पांच मिनट से परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े पेश किया जाएगा। अज के इस प्रोग्राम दे विच तुसी राष्ट्रीय अखादान पंद्रवाड़ा 25 अगस्त तो 8 सितंबर तक दे उते जानकारी सुनोगे। अंतरराष्ट्रीय साखरता दिवस के मौके पर साखरता तो सिक्ख्या अते सशक्तिकरण वल इस विषय के उत्ते डॉक्टर सुरजीत लाल नाल कीती मुलाकात सुनाई जाएगी। साडा विरसा पेश किया जाएगा। घर परिवार सेहत संबंधी गल्लां बातां होणगियां ते मनोरंजन लई गीत संगीत भी पेश किया जाएगा। दोपहर 1:15 तो लैके 2:15 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस प्रोग्राम के दौरान समाचार आपो अपने समय से नशर किए जाएंगे।

0: दोपहर 2:30 बजे रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसी सौदागर मल ते कोमल ते साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां सरवण करोगे। शाम 4:02 ते पंजाबी फिल्म संगीत पेश कीता जाएगा। श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण तुसी सरवण करोगे शाम 4:30 बजे। साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार तुसी सरवण करोगे शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा। अज के इस प्रोग्राम दे विच काम दीआं गल्लां दे नाल नाल निम आधारित कोल इस विषय के उत्ते डॉक्टर आर एस चंदी नाल कीती मुलाकात सुनाई जाएगी। शाम 7 बजे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनोगे किसान वाणी। अज के इस प्रोग्राम दे विच तुसी किसान संदेश, किसान समाचार, मंडियां दे भाव ते नाल नाल सफल किसान यादविंदर सिंह नाल कीती मुलाकात सुनोगे ते मौसम दा हाल भी सुनोगे। 7:40 ते तुसी सुनोगे अंग्रेजी वार्ता। रात 8 बजे समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। 9:15 बजे साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे खेड संसार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। रात 10 बजे सुर साधना प्रोग्राम दे विच तुसी पंडित शिव कुमार दा संतूर ते बचाया राग सोनी सुनोगे। 10:30 बजे समा रहेगा प्रोग्राम सरगम दा। डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा तो बाद दोपहर 3:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अते रात 11:10 ते समा रहेगा लाइव ऑन इन प्रोग्राम सौगाता। एसी परचे तहत साडे इस मीटर तो अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दा वीरवा असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 6:55 होने जा रहे ने। हुण तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो संस्कृत विच खबरां सुनोगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति। वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमंत्री 35,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति। सशस्त्रबलानां युद्धाभियानक्षमतां वर्धयितुं रक्षाधिग्रहण परिषदा एका महती गोष्ठी समायोजिता। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन 10,000,000,000 कोटिरूप्यकाणां प्रस्तावाः अनुमोदिताः। निर्णयेनानेन सेनायाः आधुनिक वाहनानि, नौसेनायाः गैस टर्बाइन प्रणाल्यः, वायुसेनायाः च

0: व्याप्तम् बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन विद्यालयानाम् अवकाशः घोषितः। प्रशासनीय अधिकारिणश्च आपदुद्धार कार्याय नियोजिताः। भारत लक्जमबर्ग आर्थिक संबंधान नूतनाम औन्नत्यम नयन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लक्जमबर्ग उप प्रधानमंत्रिणा जेवियर बेटेल इत्यनेन सह मंत्रणाम अकरोत्। द्वयोः नेत्रोः संभाषणे लॉजिस्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रेषु संयुक्त प्रकल्पानाम आरंभाय सहमतिः संजाता, येन उभयतः वाणिज्यिक संपदां विस्तारः संभविष्यति। नवदेहल्याम् आयोज्यमानं ब्रिक्स सम्मेलनं भारत-ईरान संबंधानां कृते नूतन दृष्टिं प्रदास्यति। ईरान विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता इस्माइल बगाई अब्रवीत यत् राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन भारत प्रवासे द्विपक्षीय व्यापारं वर्धयितुं महतीं रणनीतिं रचयिष्यति। अनेन बहुपक्षीय वार्ता माध्यमेन मध्य पूर्व क्षेत्रे शांतिः सहकारश्च संवर्धयिष्यते। दक्षिण लेबनान इत्यस्य एकस्मिन् ग्रामे इजराइल देशस्य वायव्याक्रमणे द्वादश जनाः मृत्युमुपगताः। रात्रौ कफर रुमाने इत्यत्र आवासीय गृहे आक्रमणानन्तरं द्वौ बालकौ चतस्रः महिलाः समेत्य एकादश जनाः मृत्युमुपगताः। वाहनस्य उपरि द्वितीयेन प्रहारेण एकः पराचिकित्सकः अम्रियत। इजरायलीय सेना अवदत् यत् देशस्य अधिकृत क्षेत्रे सैनिकानाम् उपरि ड्रोन आक्रमणस्य प्रतिकाररूपेण ईरान समर्थितस्य सशस्त्र समूहस्य हिजबुल्लाह इत्यस्य मूल सौकर्याणि स्थलानि अपि च शस्त्राणां स्थानान्तरणं कुर्वन्तः नैके आतंकिनः आक्रान्ताः। भारतीय पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रे नूतन इतिहासः रचितः। किर्गिस्ताने संधिपत्रे हस्ताक्षरं विधाय भारते विश्व बेल्ट मल्लयुद्ध स्पर्धायाः मार्गः प्रशस्तः कृतः। अस्यां स्पर्धायां नागा मल्लकला जागतिक मञ्चे स्वकौशलं दर्शयिष्यन्ति, येन भारतीय क्रीडकानाम् उत्साहः द्विगुणितः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: मिडीवेव 347.6 मीटर एनर्स 73 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 7 बज चुके ने, पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। रक्षा खरीद परिषद ने हथियारबंद फौजां लई 1,10,000 करोड़ रुपए तो वध दियां रक्षा खरीद तजवीज़ां नूं मंजूरी दे दित्ती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम नूं राजधानी दे सत्या निकेतन इलाके विच एक इमारत दे टैन दी घटना दी उच्चतम पद्धर ते जांच करन दे निर्देश दित्ते ने। इमारत दे मालक नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो दे चेयरमैन वी नारायणन ने इसरो दे निजीकरण दीआं खबरां दा खंडन कीता है। केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी मीटिंग दौरान कृषि विज्ञान केंद्रां नूं मजबूत करन संबंधी कार्य योजना की समीक्षा की। बिहार विच हड़ा संबंधी हालत गंभीर बनी हुई है। गंगा अते कई होर प्रमुख दरिया कई थावां ते खतरे के निशान तो उपर वग रहे ने। पंजाब दे राजपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड दे 11 केवी दे ओवरहेड बिजली वंड नेटवर्क नू जमींदोज केबल सिस्टम विच बदलन दे प्रोजेक्ट दा उद्घाटन कीता। अमृतसर देहाती पुलिस ने सरहद पारों नशीले पदार्था अते नाजायज हथियारां दी तस्करी करन वाले मॉड्यूल दा पर्दाफाश करदिआं दो व्यक्तियां नू 15 पिस्तौलां अते 5 किलो हीरोइन समेत गिरफ्तार कीता है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई के सालाना निवेशक सम्मेलन AIM 2026 विखे UAE अंतरराष्ट्रीय निवेश कौंसल के सकत्तर जनरल HE अब्दुल्ला अहमद अल सुवेदी नाल मुलाकात

जे मंजिल पानी है तो पहला घरों निकलना पैना है। हर रोज सवेरे उठ के खुद दे नाल लड़ना पैना है। सिर्फ भजन नाल कुछ नहीं मिलना इस जिंदगी विच। भज रहे हाँ क्यों पहला ये भी समझना पैना है। हर रोज सवेरे उठ के नवा एक ख्वाब बुनना पैना है। जिंदगी दी भज दौड़ विच सही रस्ता चुनना पैना है। किवें पहुंचांगे मंजिल तक ये तो बाद दी गल है। असी दौड़ रहे हाँ क्यों अजे दिल नूं पुछना पैना है। सोनी सवेर प्रोग्राम सुनन वालियां दी खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल ते अदब जी। दोस्तों असी रोज सवेरे उठदे आ काम ते भजदे आ मेहनत करदे आ पर की कदे असी खुद नूं पुछिया है कि असी ये सब क्यों कर रहे हैं। साडी जिंदगी विच भजन दी वजह की है। एक छोटी जी मिसाल देखो जंगल विच रोज सवेरे शेर भी दौड़दा है ते हिरण भी। दोवां दे दौड़न दा तरीका इको है पर दोवां दा क्यों बिलकुल वखरा है। हिरण इस लई दौड़दा है कि जे अज पूरी ताकत दे नाल ना भज्जिया तां मारिया जावेगा यानी उसका क्यों है अपनी जान बचाना। ते शेर इस लई दौड़दा है कि जे अज ना भज्जिया तां भुखा मर जावेगा यानी उसका क्यों है अपना पेट भरना। दोवां कोल जिउंदे रहिण दा एक बहुत ही साफ अते मजबूत क्यों है। ठीक यही गल साडे ते वी लागू हुंदी है। दुनिया विच हर सफल इंसान दी जिंदगी विच उसका क्यों बहुत साफ हुंदा है। एक क्यों ही है जो सानू रोज सवेरे बिस्तर छड्डन संघर्ष करन अते हारन तो बाद भी दुबारा खड़े होण दी ताकत दिंदा है। जदों तुहाडे अंदर दा क्यों साफ हो जांदा है तां रस्ता किवें बनाउणा है उह जिंदगी अपने आप सिखा दिंदी है। किवें तां सिर्फ मंजिल तक पहुंचण दा एक तरीका है पर असली ताकत तुहाडी वजह यानी कि तुहाडा क्यों है। जदों तुहाडे अंदर दा क्यों साफ हो जांदा है तां रस्ता किवें बनाउणा है उह जिंदगी अपने आप सिखांदी है। ते अज दी सवेर फिर खुद तुसी अपने आप नूं पुछो कि तुहाडा क्यों की है। आओ दोस्तों अपने अंदर दे उस सिड नूं जगाउंदे हां जो शायद अजे भी सो रहा है। सुनदे हां वेकअप सिड दा इस सुपर हिट ते जोशीला टाइटल ट्रैक ते आगाज़ करदे हां अज दे इस प्रोग्राम दा इस संगीतक सफर दे नाल।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
3: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा

0: के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमरीका और 24

0: 20 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज्य का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।

0: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, एमसीडी अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satya Niketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, this mega project has now been fully completed and will be formally dedicated to the nation by the Prime Minister.
3: Dedicated freight corridor.
4: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation by Prime Minister tomorrow. In 2014, the Prime Minister took up this project and resolved all the issues and challenges associated with it. Today, the project has finally been completed.
3: Jitni bhi usme problems thi, unko solve kiya aur ab complete hua.
2: Our correspondent has filed this report.
5: A major highlight of PM's

महक पंजाब दे प्रोग्राम सुनण वालियां दी खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार जी। दोस्तों जदों वी असीं हिंदी सिनेमा जां पंजाबी फिल्मी जगत दे सुनहरे इतिहास दे पन्ने फरोलदे हां तां इक अजिही जादुई आवाज़ साडे कन्नां दे विच गूंजदी है जिस ने हर भाषा हर मूड अते हर पीढ़ी नूं अपना दीवाना बनाया। असीं गल कर रहे हां वर्सटाइल सिंगर आशा भोसले जी दी। भावें आशा जी दा जन्म महाराष्ट्र विच होया पर पंजाब पंजाबीयत अते पंजाबी मां बोली नाल उनां दा रिश्ता बहुत ही गूढ़ा अते बेमिसाल।

यूं तो हमने लाख हसीन देखी हैं, तुम सा नहीं देखा जी। दोस्तों जदों असीं इस फिल्म की कहानी की गल करते हैं तो इस फिल्म की कहानी असाम के काटपुर तो शुरू होती है, जिथे जिमीदार बद्री प्रसाद अपने दोस्त के पुत्र शंकर के नाल अपनी गोद लई ती मीना का रिश्ता तय करता है। असली शंकर की गैरहाजरी का फायदा उठा के सोहन नामक व्यक्ति जिहड़ा जाली शंकर बन के घर विच दाखिल हो जाता है, तो अखीर दे विच असली शंकर अपनी पछाण साबित करके सोहन की चाल का पर्दाफाश करता है। तो 1957 दे विच आई इस फिल्म की जदों स्टारकास्ट की गल करते हैं तो शमी कपूर मुख हीरो, शंकर गोपाल के रूप के सामने

आए जिन्हां नूं इस फिल्म ने रातों रात सुपरस्टार बना दिता। अमिता मुख हीरोइन मीना दे रूप दे विच सामने आई। प्राण इस फिल्म दे मुख विलेन रहे जिन्हां दा नाम सी फिल्म दे विच सोहन। ते इसे तरह राज मेहरा सरदार राजपाल मीना दे पिता दे रूप दे विच सामने आए। ते होर बहुत सारे चेहरे भी साडे इस फिल्म दे विच सामने आए जिन्हां ने अपनी दमदार भूमिका दे नाल अपनी इस फिल्म दे विच एक अमर छाप छड्डी। ते हुण फिल्म दे विच अगले गीत दे वल वधदे आं। आशा भोसले ते मुहम्मद रफी दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत सुणदे आं।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

जी मुहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ तो ओपी नैयर साहब का संगीत सीधा दिल के उतर जाता है। इस गीत की बीट सुन के अज भी पैर साढ़े थिरकन लग पेंदे ने। ते हुण गल करदे आ प्रोग्राम दे विच मुख अदाकारा अमिता बारे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म दे विच कहिंदे आ कि असल दे विच अमिता नूं एक वड्डी स्टार वजो लॉन्च करन दे लई ये फिल्म बनाई जा रही सी। फिल्म का सारा फोकस अमिता ते सी ते शमी कपूर नूं तां सिर्फ एक सपोर्टिंग हीरो वजो रख्या गया सी, पर फिल्म सुपरहिट होण तों बाद सारा क्रैडिट शमी कपूर लै गए। ते इस फिल्म की सफलता की सब तो वड्डी रीढ़ की हड्डी सी इसका संगीत, जिस नूं तैयार किया सी महान संगीतकार ओ पी नैयर ने।

छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के जी न चला। जी दोस्तों, रफ़ी साहब का अनोखा ठहरा इस गीत दे विच सानू देखन नू मिलता है। इस गीत की खासियत यह है कि जदों इस विच शमी कपूर पर्दे ते नोकझोक करते ने तो रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दे विच एक बहुत ही प्यारा नखरा ते शरारत भरी है। मजरू सुल्तानपुर पुरी जी दे जेड़े लिखे बोल ने, दूर खड़ी हैरान है क्या दांतों में यू उंगली न दबा नू, रफ़ी साहब ने जिस अंदाज दे विच गाया वह सीधा शमी कपूर के चुलबुले किरदार से 100% फिट बैठता है। ओपी नैयर जी की वक्री धुन, उन्हां दी अपने तेज़ म्यूजिक ते घोड़ा गाड़ी टांगा की जिहड़ी रिदम वाले गीत लई ओपी नैयर साहब जाने जाते हैं, वह भी सानू इस गीत दे विच सुनन नू मिलती है। तो इस गीत दे विच उन्होंने ऑरकैस्ट्रा का बहुत ही हल्का अते शांत इस्तेमाल कीता, जो सवेर के समय रेडियो ते सुनन दे विच बहुत ही सूदिंग लगता है। परदे ते कहिंदे जदों शमी कपूर अमिता दे आले दुआले घूम के गीत गाउंदे ने तां उन्हां दीआं अक्खां दे इशारे अते चेहरे दे हाव भाव देखण वाले हुंदे ने। ते इह गीत फिल्म दे विच उदों आउंदा है जदों हीरो हीरोइन दे विचकार प्यार दी शुरुआत हो रही हुंदी है।

सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बना दिता। ते हुन समा हो गया जी इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे तो इजाजत लैन दा। उम्मीद है अज दा ए एक ही फिल्म दे गीत दे विच सफर तुमसा नहीं देखा फिल्म दा तुहानू पसंद आएगा। अपनी दोस्त पूजा हांडा नू अज दा ए प्रोग्राम हुन इत्थे ही खत्म करन दी इजाजत दे दिओ, पर आकाशवाणी दे नाल इसे तरह तुसी बने रहो।

0: जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी एक ही फिल्म दे गीत, ते अज दी फिल्म सी तुमसा नहीं देखा।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: मीडिया वेब 3746 मीटर या 873 kHz से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण अलग अलग कलाकारां दीआं गाईआं गज़लां समात फरमाउने आ। सब तो पहला सुनदे आ जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज़ दे विच गाई प्रोग्राम दी पहली गज़ल।

एक नज़र देख के हम जान गए आप क्या चीज़ हैं, हम पहचान गए। जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दिया आवाज़ां दे विच तुसी ये गज़ल समात फरमा रहे सी। आओ हुण प्रोग्राम दी अगली गज़ल सुनते हैं, अहमद हुसैन ते मुहम्मद हुसैन दिया आवाज़ां दे विच गाई, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, हम तुमको भूल ना पाएंगे।

किसी ने भी ना देखा निगाह भर के मुझे, गया फिर आज का दिन भी उदास करके मुझे। पंकज उदास की आवाज़ के विच तुसी ये गज़ल समाप्त फरमा रहे सी। आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले तुसी वक् वक् कलाकारां दियां गाइयां गज़लां समाप्त फरमा रहे हो। तो लो हुण प्रोग्राम दे विच अगली गज़ल सुनदे हां, भुपिंदर सिंह ते मिताली दियां आवाज़ां दे विच गाई हुई। सात सुरों का जो सरगम से रिश्ता है, कुछ ऐसा ही तेरा हमसे रिश्ता है।

0: वे साय तू क्या कह रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा

0: जी दोस्तों, तुहानू पता है कि आशा जी सिर्फ भारत दे विच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अजिही लैजेंडरी गायिका ने जिन्हां दा नाम दुनिया विच सब तो वध गाने रिकॉर्ड करन दे लई गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे विच दर्ज है। उन्होंने 20 तो वध भाषावां विच हज़ारां गीतां नू अपनी आवाज़ दित्ती ते अजिही महान आवाज़ दे गीतां दी फरमाइश लई साडा फोन नंबर बिल्कुल जी अज दा 73 ते इस नंबर नू मिला के साडे अगले कॉलर आए ने आशा जी दे खूबसूरत गीत दी फरमाइश दे नाल। देखते कौन आए ने। हैलो
1: जी, जगदीश शर्मा जी।
0: जी जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, ईरान वाली पालिका से जी, आज ये ऐसा बहुत जी, कहीं एक फूल दो बाली कहीं सुना दो जी।
0: ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, एक फूल दो
1: माली। ये चलो ये पर्दा उठा दो, ये सुना
0: जी,
1: दो।
0: मोहम्मद रफी ते आशा जी दी आवाजा दे विच गीत तुहाडे तक पहुंच रहा। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।

0: सुरों की मलिका, संगीत का वो साज हो तुम, हर दिल में जो गूंजे वो खूबसूरत आवाज हो तुम। यूं तो चले गए हो इस दुनिया से अलविदा कहकर, पर हर धड़कन में जो जिंदा है वो एहसास हो तुम। जी बिल्कुल, आशा भोसले जी नू अज असी उन्हां दे जन्मदिन दे मौके दे उत्ते याद कर रहे हैं, तो उन्हां दी याद नू डेडिकेट कर रहे हैं। उन्हां दे गाए हुए खूबसूरत गीत ते इसे गीतां दे सिलसिले दे विच अगली फरमाइश, अगले कॉलर साडे तक आ गए ने, देखते हैं कौन आए ने। हैलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: राम नाथ बोल रहा, फतेहगढ़।

जी दोस्तों, आशा भोसले जी दियां खूबसूरत यादां नूं असीं याद कर रहे हां उहनां दे गाए हुए गीतां दे राहीं। ते हुण प्रोग्राम दे विच अगली खूबसूरत याद, अगले खूबसूरत गीत दे नाल साडे कॉलर आए ने, देखते हां कौन आए ने। हैलो हैलो जी, आए ते लगदा चले गए ने, दो साल बाद इहनां दी कॉल लगी, बड़े खुश सी जी साडी कॉल, कहिंदे दो साल बाद लगी है, पर लगता है जी अपनी फरमाइश दस के इन्होंने फोन कट दिता है। कोई गल नहीं जी, अगले कॉलर का इंतजार रहेगा। गीत सुनना चाहते सी आशा भोसले जी की आवाज़ दे विच, शान फिल्म दे विचों लिया, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैम जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, अपना नाम पता ग्राम दस दियो।
1: मैं मंडी लाडू का जी, जिला रायल का राधा बेकरी से बोल रहा हूँ जी। धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत थोड़ा। ते गीत दसो, केड़ा सुनोगे गीत
1: हाँ, मैंने प्यार किया सुना दो जी।
0: दस जी? आशा जी नु अज असी याद कर रहे हैं, उन्हां दे
1: हाँ
0: जन्मदिन
1: जी,
0: दे मौके ते उन्हां दी गाया गीत सुनावांगे तुहानू।
1: ठीक है जी।
0: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म दे विचो गीत आशा जी दी आवाज दे विचो तुहानू सुनांदे आ, दम मारो दम। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
1: ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू मैम।

0: हुण तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम हैलो फरमाइश मीडिया वेब 347.6 मीटरियां नर्स 73 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 11 बज रहे हैं। हुण तुसीं हिंदी विच समाचार सुनोगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिम में समर्पित माल ढुलियारे गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। इस दौरान रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत तथा सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1986 को आम सभा के 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि

0: भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 11:05 वज रहे ने। वेला हो रहा आओ सुनदिया प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। जी दोस्तों, तमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम लेके हाजिर है तुहाडी दोस्त वीनस। ते इस प्रोग्राम विच तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद गीत सानू फरमाइशां करके, ओ किस तरह व्हाट्सएप दे जरिए। जी दोस्तों, व्हाट्सएप दे जरिए अपने मनपसंद गीत साडे कोलों तुसी सुन सकदे हो प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी दे विच। करना की है कि तुसी एक नंबर डायल करके व्हाट्सएप ते जाके सानू लिखना है अपना नाम, अपने शहर दा नाम ते अपने दोस्तां दा नाम जो गीत नू सुनना चाहुंदे ने। ते सब तो जरूरी उस गीत दे बोल टाइप करके सानू भेजो जिहड़ा गीत तुसी साडे कोलों सुनना चाहुंदे हो। ते नाल ही मैं दस देवां अपने मनपसंद गायक कलाकारां दे गीत वी तुसी साडे कोलों फोन करके टाइप करके सानू भेज सकते हो। असं उन्होंने गाए हुए गीत तुहानू सुनावांगे, तुहाडियां सारियां फरमाइशां पूरियां करांगे। सो सानू ये सारी डिटेल भेज दो इस नंबर ते। नंबर है जी 9465536077 यानी कि 9465536077। सो जब तक तुहाडियां फरमाइशां साढ़े तक पहुँचदियां ने तद तक इंजॉय करो मेरे नाल इस गीत नू जिसनू गाया है हंस राज हंस ने। ते भेजो फटाफट सारी डिटेल सानू। वेला है तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करन दा। प्रोग्राम चल रहा है जी तमक जलंधर पैंदी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तों।

जी अगली फरमाइश सानू आई है जी बरेटा मंडी तो बीजन वाले ने फरमाइश उषा किरण रज्जी निक्की प्रीति ते मोनिका ये सब फरमाइश कर रहे ने

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लेवई छत्तीसगढ़ तो पिजन वाले ने फरमाइश गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी ये भी सेम फरमाइश कर रहे ने। अगली फरमाइश आई है जी सानू पिंड बिल्लीमार जलालाबाद तो अगली ये फरमाइश सानू भेजी है जी प्रेम खुराना परवीन ईशा अरमान राकेश ममता अनन्या ते अंकुशा खुराना होर वालों। अगली फरमाइश सानू आई है जी बबलू वर्मा सोनू राज महेंद्र प्यारे लाल ते पिंड खुईयां वाला सरवर तहसील अबोहर जिला फाजिलका तो भेजन वाले ने फरमाइश। ते अगली फरमाइश सानू आई है जी बस स्टैंड के कोलों हनुमानगढ़ फाजिलका तो भेजन वाले ने फरमाइश रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। अगली फरमाइश आई है जी पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो भेजन वाले ने फरमाइश अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक ते मधु नायक। अगली फरमाइश सानू आई है जी वेद प्रकाश कौशल्या रोहित अर्चना चित्रा अंकुश ते बहुत सारे दोस्त फरमाइश भेज रहे ने हमीरपुरा हरिपुरा अबोहर तो। अगली फरमाइश सानू आई है जी गुरचरण सिंह गुलबीर सिंह पवन सिंह ते हरदयाल सिंह वालों ये फरमाइश भेजी है जी फाजिलका तो पिंड डबवाला कलां तो। अगली फरमाइश सानू भेजी है जी पिंड मंडी लडूका तो भेजन वाले ने फरमाइश टिंकू गिरधर सुमन गिरधर दिव्या गिरधर नमन गिरधर उर्मिला गिरधर ते संजीव गिरधर होर वालों भी सेम फरमाइश है। अगली फरमाइश आई है जी कुंडी सैक्टर 5 सूर्या नगरी जोधपुर राजस्थान तो ये फरमाइश भेज रहे ने रमेश चंद चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी ते बेबी हिमांश। अगली फरमाइश सानू आई है जी गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो भेजन वाले ने फरमाइश हरदेविका बलविंदर बिरक जतिन विरक ते मीका विरक इन्हों की फरमाइश पूरी कर दें तो आओ थानू सुनाने गिप्पी गरेवाल की आवाज़ में प्यारा जिहा गीत।

लाल, हजारी लाल शर्मा, जगदीश वर्मा, बलवंत सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे ने। सो इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हां ते आओ तुहानू सुनानी आ राजवीर जवंदा दी आवाज़ विच ये प्यारा जिहा गीत।

0: ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा।

0: मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दे 12:05 वज रहे ने। आओ सुनदे हां पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम वसदे वड़े लैके अर्चना हाजिर
0: ते स्वागत करदे हां सारयां दा प्रोग्राम बाल जगत प्रोग्राम वसदे वेड़े दे विच। और जदों असीं गल करदे हां खास करके वसदे वेड़े दी ते हमेशा आस उम्मीद करदे हां कि सारयां दे वेड़े जिहड़े ने ना ओह वसदे रहण, खुशियां खेड़े इसे तरीके चलदे रहण और जिंदगी जिहड़ी है साडी इस तरीके बसर होवे कि असीं अपनी जिंदगी दे विच होर ज़्यादा मल्लां मारदे रहिए।
1: बिल्कुल जी, जिंदगी दे विच जिहड़ा खुश रहना है बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहिंदे खुश होने वास्ते कुछ लगता ही नहीं
0: जी,
1: दो मिनट लगते ने अपने मन का एक भाव जगाना हुंदा है कि मैं बहुत खुश हाँ। तो मन जो खुश हों ना असं सारे हस के गल करते हाँ, साढ़े आस पास खुशहाली आन लग जाती है, साडा परिवार अपने आप में एक वधिया नज़र ना देखना शुरू कर दिता है, तो सारे काम ना फटाफट बनने शुरू हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, और जो परिवार सारे इकट्ठिया मिलकर रेंदे ने, गल्ला बातें करते हैं, सांझ पाते हैं और खाना इकट्ठिया खास करके खाते हैं, तो वो अजिहा समा हों जिस कि बहुत सारिया योजना गल्ला बातें की जा सकती ने, अपने विचार की सांझ पाई जा सकती है। जेकर जिंदगी दे विच कोई मुश्किलां चल रही ने उन्होंने सांझियां किया जा सकता है। और अर्चना जो असी गल करते हाँ उस बहुत ही सोहनी जी प्यारी जी थाली की, जो असी परिवार दे विच बैठ के खाने रंगीन थाली जिस दे विच कि हर वो न्यूट्रिशन हुंदा है जिहड़ा कि साढ़े शरीर के हर अंग नूं वधिया तरीके दे नाल प्रफुल्लित कर सके, वह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि उहदे विच असी सांझ भी पाउने आ गल्लां बातों की, अपने शरीर का ध्यान भी रख रहे होंने।
1: गुरप्रीत, जिस तरह मैं पहला ही भाव की गल की ना, जदों अगे सवाणियां रोटी पकांदियां सी, शायद हुण भी कई घरां च होवे नियम कि इदां ही करना है, जदों आपां मन दे भाव दे नाल खुश हो के रोटी पकाने आ ते ओह अपने बच्चां नूं वरताउने हां या घर दे होर जीआं नूं वरताउने आ, उहनां दे अंदर भी मल्लो मल्ली ही ओह भाव चले जांदा
0: है।
1: और अगे सवाणियां की करदियां सी, अपने सिर नूं ढक के जिहड़ी रोटी पकांदियां सीगियां ते उहदे नाल नाल जदों उहनूं वरतांदियां सी ते ओह वी सिर ढक के वरताया जांदा सी। उहदे पिछे ना इक बहुत ही वधिया इक वजह है, चाहे उहनूं तुसीं साइंटिफिक भी कह सकदे हो, उहदे पिछे वजह इही हुंदी सी, इक तां जिहड़े साडे बाल ने ओह खाणे च नहीं सी गिरदे ते दूजा इह सीगा कि जदों असीं अपना सिर

0: जी गुरप्रीत, आपां अज अंतरराष्ट्रीय साखरता दिहाड़ा मना रहे हैं।
1: जी, और जदों असीं भारत की गल करते हैं ना, भारत में साखरता नूं समाजिक अते आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन मनिया जाता है। और आज़ादी तो बाद ही जदों असीं गल करते हैं ना अर्चना, तो यह बालक सिक्ख्या, सर्व सिक्ख्या, ये सारिया ही मुहिमां जिहड़ियां ने ना जरूर चलाईया गई सन। जदों असीं साखरता मिशन की गल कर लीए या फिर नव भारत साखरता कार्यक्रम वर्गियां इहो जिहियां कारगुजारियां की गल कर लीए जिस दे जरिए कि खास करके बालगां नूं जिहड़ा है वह साखर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी मनिया जाता है। और जदों ये विचारधारावां अगे आउंदियां ने, जदों ये सोच शक्ति अगे आउंदी है और नाल दी नाल समाज बहुत ही सोहणे तरीके दे नाल अपना हत्थ फड़ाउंदा है अगे वध के कि सच्ची असीं वी नाल तैयार बर तैयार खड़े हाँ, इस साखरता नूं होर अगे लैके जावांगे, सिक्ख्या नूं होर अगे लैके जावांगे। ते सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जिंदगी दे बहुत सारे पाठ जिहड़े ने ना उह वी पढ़ाउणे बहुत ही ज़्यादा जरूरी मन्ने जांदे ने, क्योंकि साखरता दा मतलब सिर्फ ते सिर्फ अक्खर पछाणना नहीं हुंदा। असल साखरता उह है जिस नाल व्यक्ति जानकारी नूं समझ सके, अपने अधिकारां बारे जाण सके, सही फैसले लै सके और समाज दे विच बहुत ही वधिया तरीके दे नाल आत्म विश्वास दे नाल

0: जो आंकड़े सांझे किए ने उसके मुताबिक असं काफ़ी तरक्की कर चुके हैं तो अजे बहुत तरक्की करनी बाकी भी है। जो असी साखरता तो सिक्ख्या फिर सशक्तिकरण की गल करते हैं तो सिक्ख्या या असं कह सकते हैं कि साखरता सशक्तिकरण का सब तो व्डा साधन भी मनिया जाता। ताडे मुताबक कि शक्ति है साखरता दे विच ये किसी मुल्क नू किवें बदल सकती है?
1: Education is the most important weapon.
0: जी
1: With the help of the education, you can change the whole world.
0: बिल्कुल।
1: ये नेल्सन मंडेला जी ने अपने शब्दों के विच ये बयान किया सी एजुकेशन की महत्ता दसते हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की गल करिए उन्होंने भी अपने जी बायोग्राफी आ उस दे विच इस चीज़ नू मैनशन किया कि किस तरह एक सिक्ख्या जी इंसान की जिंदगी फर्श तो अर्श तक लै जाती है। जे दे जे आदमी जिहड़ा आ कोई भी लड़का होवे जां लड़की होवे साखर नहीं होणगे सिक्ख्यत नहीं होणगे एजुकेट नहीं होणगे तो उन्होंने अपने अधिकारों बारे नहीं पता लगेगा अपने फर्जों बारे नहीं पता लगेगा और जिस देश के नागरिकों नू अपने फर्ज के अधिकारों बारे नहीं जानकारी उन्होंने राइट्स केड़े आ उन्होंने किस की वरतों करके अगे बढ़ सकता है जे इस चीज़ तो ही इग्नोरेंट आ तो मैनू लगता कि वह देश जिहड़ा आ बहुत कह सकते कि वधिया तस्वीर आने वाले समय के जी असी नहीं देख सकते।
0: जी ये तो होगी किसी देश की तस्वीर जो असी व्यक्तिगत सुधार की गल करते हैं ज बेहतरी की गल करते हैं किसी इंसान के व्यक्तिगत जीवन के साखरता किवें बदलाव लैके आ सकती है?
1: व्यक्तिगत की जो आप गल करिए मैनू याद आ कि 2010 के मैनू अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी पढ़ने का मौका मिलया सी। कहानी तो बहुत लंबी है पूनम मैम जी पर मैं यही दसना चाहना उन्होंने पूछा गया कि तुम अपने बेटे की बनाना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं कई सवाल पूछे गए लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस गल की चिंता नहीं कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने मैनू तो दिन रात एक ही चिंता सता रही है कि कुछ भी बन तो पहले एक देश का जिम्मेवार नागरिक जरूर बन जाए तो जे देश का नागरिक वधिया होगा तो वह देश के दे हर जिहड़े आ पहलू आ देश की हर जिहड़ी मुहिम आ वह बेशक आर्थिक होवे जां समाजिक होवे जां राजनीतिक चेतना की गल करिए असीं मनोविज्ञानिक चेतना की गल करिए हर जिहड़ी चेतना मुहिम आ उहदे विच अपना योगदान पाऊगा। पढ़िया लिखिया नागरिक जिहड़ा आ पढ़िया लिखिया नागरिक का मतलब है कि उस दे विच चेतना आ गई आ हर चीज़ नूं अपने देश के संविधान नूं वधिया तरीके नाल समझ रहा है वो और उस नूं अगे रखते हुए देश के विकास के विच अपना बनता योगदान जिहड़ा वो साखर इंसान ही पा सकता है।
0: बहुत वधिया तुसीं गल कीती कि देश के संविधान नूं समझ रहा है तो उसके मुताबक अपने फर्ज निभा रहा है। जदों असीं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ नूं संभालण की गल करते हैं टैक्स अदा करन की गल करते हैं सड़कां नूं पर्यावरण नूं साफ सुथरा रखण की गल करते हैं तो वह असीं जागरूक होवांगे साखर होवांगे ता ही ये भूमिका अदा कर सकते हैं। समाज में बहुत सारे योजियां कुरीतियां ने जिन्हों दूर करने की लोड़ है तो जेकर असी साखर होवांगे तो ही वह कुरीतियां दूर हो सकदियां ने। तुसी की समझते हो कि वाकई समाजिक कुरीतियां नू साखरता दे नाल दूर किया जा सकता है?
1: 100% मैम जी आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि साखरता दे नाल जिहड़ा समाजिक कुरीतियां नू ही दूर किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर दहेज प्रथा की गल कर लिए असी युद्ध नशियां विरुद्ध की गल कर लिए ड्रग डी एडिक्शन जिहदे कहिंदे आ कि अज की नौजवान पीढ़ी जिसने साड़ी देश की जी तस्वीर है वो वधिया वधिया रंग भरने से जे वह साखर नहीं होणगे तो मैनू लगता कि साडा सपना जिहड़ा अधूरा रह जाऊगा। हर मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गल कर लीए फैमिली प्लानिंग की असी गल करते हैं ये सारा कुछ जिहड़ा डिपेंड करता है साखर जिहड़े साडे सिटीजन देश दे आ ते इस करके सरकारां जिहड़ियां आ टाइम ते बेशक वह भावें केंद्र सरकार होवे भावें राज्य सरकार होवे हमेशा जिहड़ा आ इस तरह दी वक्खरियां वक्खरियां प्रोग्राम जिहड़े लॉन्च करदे आ जिस दे नाल देश दे नागरिकां नूं साखर जिहड़ा कीता जा सके। उदाहरण दे तौर ते असीं गल करदे मिड डे मील दी गल कर लईए मिड डे मील भी इस दे लई एक बहुत अहम कदम कह सकते हैं कि बच्चे जिहड़े आ इस तरह दे परिवारां चों आउंदे आ जिन्हां दे घर जिहड़ा आ कुछ आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं आ लेकिन उन्हां नूं इह गवर्नमेंट वल्लों एक उपराला कीता गया कि उन्हां नूं मिड डे मील ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ।
0: ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ?
1: ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਸਦੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2,50,000 वैगन मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं,

0: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
1: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेरी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असि आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:05 वज रहे ने। आओ हुण तुहानू साडे दिन विच बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लाओ जी, अज तुहानु दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
3: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ, ते तू वायरल ना होंदा?
2: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना, ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: की कहा, तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।

दुनिया इस फिल्म का गीत सुन रहे सी किशोर कुमार ते आशा भोसले दी आवाजा विच और सुनदे प्रोग्राम दा अगला गीत फिल्म नमकीन चले आ गया आवाज आशा भोसले दी।

0: मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और खिताब करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान से मुतालिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर 2019 के एक हतके इज्जत मामले में समन वापस लेने से इनकार कर दिया है। IMD ने बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी लागत 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर आजम ने माल लाने ले जाने वाली मखसूस मगरबी राहदारी के 3 अहम हिस्सों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने न्यू सनंत, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू GNPT से मालबरदार रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई पैसेंजर ट्रेन का भी आगाज किया। ये ट्रेन अलीराजपुर के दूरदराज के कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। वजीर आजम मोदी ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे को तेजी से तब्दील करने की बात भी उजागर की। उन्होंने मालबरदारी की मखसूस राहदारियों की तकमील के लिए कहा, जिनकी तवालत 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है, जो 21वीं सदी के भारत की एक तारीखी हुसूलियाबी है और मुल्क के कामकाज के बदलते हुए कल्चर का एक सबूत है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेट फिलको फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: वजीर आजम ने इशारा दिया कि अगरचे इस प्रोजेक्ट का तसव्वुर 2006 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर कई साल तक कार्रवाई न हो सकी। इसके बरक्स पिछली दहाई में इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के कौमी इको निजाम में पूरी तरह तब्दीली आ गई। आज ये मालबरदारी की राहदारी तेजी से तरक्की करते हुए भारत के लिए अशद जरूरी हो गई है। बाद में वजीर आजम नवसारी का दौरा करेंगे और वहां BJP के नए AI से लैस हाईटेक दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मुंबई में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुअस्सर सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसेस में होता है। 4 रोजा ये फेस्ट 11 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का ये 7वां एडिशन है, जो आज मुंबई में शुरू हो रहा है। इस फेस्ट का आगाज 2020 में किया गया था। GFF कायदाना प्लेटफॉर्म का एक बैन अलावामी तस्वूर बनकर उभरा है, जहां पॉलिसी साज, जाब्तकार, मरकजी बैंकों से वाबस्ता शख्सियतें, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनियों से वाबस्ता शख्सियतें, सरमायाकार तालीमी इदारों से वाबस्ता शख्सियतें और दीगर आलमी मुतालिक अफ्रीकन मुस्तकबिल की मालियात को शक्ल देने के लिए यकजा होते हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी को जारी किए गए समन को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। ये समन 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की रायजनी पर हतके इज्जत के एक केस में जारी किया गया था। जस्टिस NR बोरकर की इन्फिरादी बेंच ने जनाब गांधी की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें मैजिस्ट्रेट की एक अदालत के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की गई थी। हाईकोर्ट ने अलबत्ता मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस समाअत को 6 हफ्ते तक मुलतवी करने की 2021 की हिदायत को बरकरार रखा। इस तरह जनाब गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मोहलत मिल गई है। इस केस का ताल्लुक राफेल सौदे के बारे में जनाब गांधी की 2018 की रायजनी पर एक हतके इज्जत की शिकायत से है। उनके वकीलों ने इसे एक बेजा शिकायत करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वें यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर हजारिका की आवाज ने आसाम और शिमाल मशरक की रूह को पूरे मुल्क तक पहुंचाया। वजीर दिफा राजनाथ

0: ने भी मशहूर गुलकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। दिफाई साजो सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। आज खानगी का बैनुल अक्वामी दिन है। ये दिन अफराद, बिरादरियों और मुआशरों के लिए खानगी की अहमियत की याद दहानी कराने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल खानगी के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है अवाम के लिए खानगी, कुर्राए अर्ज और खुशहाली। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 1966 में अपने आम इजलास के दौरान यूनेस्को ने बैनुल अक्वामी यौम खानगी का आगाज किया था। ये दिन तेजी से बदलती हुई दुनिया में खानगी में इजाफा, मौजूदा और उभरते हुए चैलेंजों की गहरी समझ और मुस्तकबिल के एजेंडों का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। बैनुल अक्वामी यौम खानगी 2026 मनाने के लिए यूनेस्को मेक्सिको की हुकूमत के साथ मिलकर मेक्सिको में अवाम के लिए खानगी, कुर्राए अर्ज और खुशहाल के मौजू पर एक आलमी तकरीब का इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में यूनेस्को बैनुल अक्वामी खानगी इनामात भी पेश किए जाएंगे। 2015 से खानगी में इजाफा, पायदार तरक्की और अमन कायम करने में इसके तआवुन का जायजा लेना आलमी इजलास का अहम मकसद है। पीएस विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बलोच शहरी इमरान अली की ताकत के बल पर मुबैना गुमशुदगी और गैर कानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस हलाकत के वाक़े की आज़ाद, मुनसिफाना और गहरी तहकीकात करे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन के दौरान भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में आज इसी तरह का मौसम रहेगा। उधर अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, ओडिशा, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाके, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलने के इम्कान हैं। आज अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में भारत ने सोने के 2 तमगे जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय संधि ने मर्दों के पैरा रिकर्व डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में अपना लगातार 3रा टाइटल जीता। इधर खवातीन के पैरा रिकर्व डबल्स में पूजा और भावना को चांदी का तमगा मिला। वो फाइनल में चीन की खिलाड़ियों से 6-0 से हार गई। कंपाउंड डिविजन में तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने इराक के खिलाड़ियों को 139 के मुकाबले 152 पॉइंट से हराकर मर्दों का डबल्स का टाइटल हासिल किया। हॉकी में भारत की मर्दों की जूनियर टीम आज चीन के शहर मोकी में एशिया कप सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब है। उसने जनूबी कोरिया को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने 2800 किलोमीटर के बार बर्दारी के लिए मखसूस कॉरिडोर की तकमील को 21वीं सदी के भारत के लिए एक तारीखी हुसूलियाबी बताया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और खिताब करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान के ताल्लुक से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर 2019 के एक हतके इज्जत मामले में समन वापस लेने से इनकार कर दिया है। IMD ने बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचारों तो बाद एक बार फिर तो हाजिर है प्रोग्राम फौजी वीरा लीला के। अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में

0: स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
2: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
3: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा

0: सभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
2: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे ढाई बज रहे ने। लव सुनो प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च सुदागर लाल कोमल ते साथियों को कुछ भेटा सुनोगे। सुनदियां प्रोना तो गाई हुई भेट।

हम सारे सुख चैन गए भूल। तुसी सुन रहे हो माता के पेटों सुभागर मल कोमलते साथियों को लो आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र थों।

बेहतर भविष्य का राह खोलती है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ते सूबे विच नशिया की अलामत नू काबू करन अते इसके खात्मे लई ठोस कार्रवाई ना करन दा इल्जाम लाया है। भगवंत मान सरकार वालों अंदोलनकारी किसान यूनियना दियां मुख मंगां नू स्वीकार करन दे लिखती प्रोसे तो बाद चंडीगढ़ मोहाली सरहद ते मुजाहर कर रहे किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिता है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने गौरमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर विखे खेडा वतन पंजाब दियां 2026 तहत जलंधर पछमी दे ब्लाक पदरी खेड मुकाबले का उद्घाटन किया। पंजाब दे लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विभाग दे अधिकारियों नू सूबे भर विच लोक निर्माण विभाग अधिकार खेतर विच आउण वालियां सारियां सरकारी इमारतां पुलां अते पुलां दे होर ढांचियां दे

पदरी खेड मुकाबले का उद्घाटन किया। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विभाग के अधिकारियों नूं सूबे भर विच लोक निर्माण विभाग अधिकार खेतर विच आने वाली सारिया सरकारी इमारतों पुलों और पुलों के होर ढांचों के सुरक्षा निरीक्षण करने के हुक्म जारी किए ने। गैंगस्टरां ते वार मुहिम के 230वें दिन पंजाब पुलिस ने अज राज भर विच गैंगस्टरां दे साथियां पछाणे गए अते मैप किते 558 टिकाणियां ते छापेमारी कीती। भारत ने अज अहमदाबाद विच विश्व पैरा तीर अंदाजी सीरीज़ दे तीजे पड़ाव विच सोने दे दो तमगे जीते ने। ते भारतीय जूनियर हाकी टीम ने एशिया कप दे पूल मैच विच दक्षिणी कोरिया नूं 7-3 नाल हरा दिता है। ए सन हुण तक दियां मुख चोणवीआं खबरां। डीटीएसजी पंजाबी प्रसारण सेवा दा ए जलंधर केंद्र पेश है तुहाडा अपना प्रोग्राम जिसका नां है चिट्ठियां मिठियां।

ते लो जी, इस प्रोग्राम की शुरुआत करदे आं इस प्यारे जी गीत दे नाल। ते तुहाडा अपना प्रोग्राम है, ते उस तो पहला गीत सुनाने तो पहला मैं दस देनी कि इस प्रोग्राम विच शिरकत किस तरह कर सकदे हो। ते जी बिल्कुल, पोस्ट कार्ड दे राही तुसी पहुँचदे हो इस प्रोग्राम विच। प्रोग्राम दा पता नोट कर लो। प्रोग्राम दा नाम चिट्ठियां मिठियां, मैनिफेस्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर, पिन कोड 144001। ते ला जी, मैं तुहाडी दोस्त कृतिका कौशल, ते मेरे वल्लों सारिआं नूं नमस्कार, आदाब ते सति श्री अकाल। की हाल चाल है, ठीक है उहनां? ते लो जी, शुरुआत करदे आं प्यारे जी शुकराने दे नाल, ते आवाज़ नहीं अमृत मान दी। सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अपनी दोस्त कृतिका कौशल दे नाल। ते लो जी चिट्ठियां पहुंच चुकियां ने ढेर सारियां मेरे कोल। ते सब तो पहला चिट्ठी आई है लिख रहे ने निमृत खेरा दी आवाज़ विच कोई भी गीत सुना दिता जावे। लिखण वाले ने आदर्श नगर मलौट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना ते निवान शर्मा। अपरा सिटी तो लिख रहे ने रूपलाल नाहर, सुभाष, सोमा, अमरजीत, अंबा, परमिंदर, राजा कोई भी गीत सुनना चाहते ने। ज़िला फजलका पिंड मुलियां वाले तो लिख रहे ने परवीन काटपाल, आशा, दीक्षा, जन्नत, गुरलीन ते निशु काटपाल। नाभा तो लिख रहे ने सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरमंत। मक्खू फिरोजपुर तो बिला बजाज, हैप्पी कपूर ते मनीष बजाज ते सारा परिवार। लो जी सुना रहे इन्हां सारयां नूं निमृत खेरा दी आवाज़ विच गीत है। तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

0: सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। लिख रहे ने मोलापुर दाखा मंडी तो राजेश जैन, अरुणा, दीपक, गौतम, बिट्टू, मट्टू, नगीना, सिया, सारिका, अरहमत, सुरभी ते मनोज। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो लिख रहे ने टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका तो लिख रहे ने शुभ चंद्र बजाज, साहिल ते बिट्टा बजाज। कोटली कलां पंजाब तो यादविंदर सिंह, सुखविंदर, रविंदर, मनजीत ते गुरजोत। जिला फिरोजपुर तो लिख रहे ने जसजीत सिंह, टहल सिंह, बूटा सिंह, अजीत, हरनेक, जीत सिंह, कुलदीप ते सारे साथी। पिंड कैरों कला, जिला तरन तारण तो लिख रहे ने गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद ते पोतरा गुणशबद। कोई भी गीत सुनना चाहते ने कुलविंदर बिला की आवाज़ में। गुरु रविदास नगर मलौट तो लिख रहे ने नानक चंद, जाजोरिया, बंटी कुमार, सुनील कुमार, विजय कुमार ते रवि कुमार। धर्मशाला पेंड कोटली तो लिख रहे ने सीता, राम केसरी, जगरूप, किंदा, केबी, काला, डॉक्टर जसपाल सिंह, सोमा ते नाल इन्हां दे सारे साथी। ते सुनाने जे इन्हां नूं कुलविंदर बिला दी आवाज़ विच गीत है। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।
1: सारा सा सुखनारी

0: बिल्डअप
1: आपा कोशिश पूरी कर रहे की इत राशन पानी
2: सही है। 200 किलो करना है कि ना 160 है।

जी बिल्कुल, छोटे होंदे दी ना गल याद आ गई कि जद भी दूरदर्शन 'च कोई खराबी हो जाती सी, टीवी 'च नहीं आउंदा सी, कनेक्शन नहीं लगता सी, ते आपां एकदम जाके ना एंटीना ठीक कर लै जांदे सी। तुसीं वी इदां ही करदे सी, लिख के भेज सकदे हो अगली चिट्ठी दे नाल। ते लो जी, चिट्ठी लिख रहे ने सानू जिला मोगा तों लक्ष्मण सिंह, लवप्रीत, काली, विक्की ते वीरू। छत्तीसगढ़ तों लिख रहे ने दतरेंगी तों भागवत वर्मा, लेवई तों गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर तों विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया तों दुर्गा राम साहू ते साथी। लुधियाणा तों लिख रहे ने विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, बीके कैलाश, अनीता ममता, मेघा पूजा, गगन कपूर, गुंजन लालसा, रमा कुंडल, निधि हरीश, कुणाल सतीश, राकेश, विनोद पाली, डीसी अरुणपुरी, नेहा, एकता, शम्मी, बोधी, सुनील, विकेपुरी ते आरएसपुरी। सुना जांदे ने सतेंद्र सरताज दी आवाज़ विच।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। लिख रहे ने सानू मंडी गोलूवाला राजस्थान तो लिख रहे ने ब्रिजलाल चौहान ते नीरज कुमार ते सुनना चाहते ने गुरदास मान की आवाज़ विच गीत।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। तो लो जी, चिट्ठी आई है जी लिखण वाले ने। चुगला बाजार समाणा तो संगीता जिंदल, पप्पू राजा खुशदिल ते हसमुख जिंदल, साधुल शहर तो ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो लिख रहे ने गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते सारे साथी। रायन तो लिख रहे ने सानू सोलंकी, रंजीत, परमजीत कौर, विष्णु देव सोलंकी, राजवीर, रमन, जस्सू ते इना दे नाल जगवीर ते सारा परिवार। अरायण तो ही लिख रहे ने डॉक्टर बनवारी, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, मोक्ष, दिशा, सुशांत ते विक्रम, जयपाल। पटेल नगर मलोट तो लिख रहे ने डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप ते बेबी आरजू। सहारनपुर तो लिख रहे ने सुरेश नरंग ते आशा नरंग ते इन्हां सारे नूं सुना रहे जी लखविंदर वडाली दी आवाज़ विच गीत है। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते इस प्रोग्राम विच सिर्फ ते सिर्फ 8 मिनट रह गए ने ते ठीक 4 बजे तुसी सुनोगे प्राइमरी चैनल तो प्रोग्राम फिलहाल चल रहा प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां गुरमीत सिंह मीता लिख रहे ने साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो लिख रहे ने जिला फजलका तो पप्पू मुनीश अमरोई बाई हरप्रीत कौर बलजीत कौर ते पोतरे गुरनूर प्रनीत ते बबलू जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो लिख रहे ने बलविंदर बिल्ला मधुपुरी राज कौर ज्योति गोल्डी रामलाल बब्बू टिवाणा ते सारा परिवार पिंड पजौनिया जिला जालौन यूपी तो लिख रहे ने सतेंद्र कुमार आदर्श ते अलौकिक पिंड खाने दी टा मलौट तो शमशेर सिंह जसविंदर कौर करण प्रताप मनप्रीत कौर तरनवीर ते मनताज जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो लिख रहे ने बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया वर्मा शोभा राहुल ज्योति अतुल पायल प्रियांश ते ऋषि वर्मा लिख रहे ने सानू फजलका तो अमन वर्मा रमन वर्मा दिव्यांश डॉक्टर मदन लाल ते सारा वर्मा परिवार ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हां अमरिंदर गिल दी आवाज़ विच गीत है तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां

जी बिल्कुल, चार मिनट साढ़े को रह गए ने ते चिट्ठियां भी पढ़निया ने तुहाडियां। लिख रहे ने उमरखेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत, श्रीमती सरिता प्रिंस बदलापुर तो, सिद्धांत प्रणीता अर्जुन, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो, वैशाली सुमीत ते ध्वनि, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो रवि कुमार, रंजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल,

सिमरत, गुरकीरत, गुरशबद ते राहुल। कोई भी गीत सुनना चाहते ने? लिखने ने पिंड नथाणा तो हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता। कृष्णा नगर, टीवी टावर, सैमी, नरी, हिल्स, नागपुर। महाराष्ट्र तो लिख रहे ने नाना, डोंगर दीवे, रमा ताई, सीमा ताई, रीमा ताई, दीक्षा ताई, राहुल ते सारा परिवार। फरीदकोट तो सतनाम सिंह किल, गुरिंदर, गुरली ते सारा परिवार। पंचकूला सैक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लव ते राधे। लिख रहे ने पिंड जिला नवांशहर तो लिख रहे ने गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका ते बेबी वाणी। बागा पुराना तो लिख रहे ने सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर, पोतरा तेग फतेह सिंह, पोतरी जसगुण रखरा ते सारा परिवार। ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हां नवीन हांडा दी आवाज़ विच गीत है। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। इस गीत दे नाल अपनी दोस्त कृतिका कौशल नूं देओ इजाजत किसी होर ते सफर ते आके तुहाडे नाल रूबरू होवांगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखियो।

843 यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर बोल रहे हां। डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा एक जलंधर केंद्र है। साडी दूजी सभा दे प्रोग्राम लेके असी हाजिर हां। शाम दे 4 बज चुके ने। सभा दे शुरू विच लो सुनो हुण तक दे मुख्य समाचार। अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा विच 35,000 करोड़ रुपए तो वध के वख-वख प्रोजेक्टां का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखिया।

वडे किया वडियाईया किछ कहना कहन न जाई, सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे। कथन अनुसार प्रभु सृजनहार दे गुण बयान नहीं किते जा सकते, ते संसारी जीवां दे अवगुणा दा कोई अंत नहीं है। समझ ही नहीं आती कि इस बेअंत संसार रचना अंदर जीवां दी मां अते प्यो कौन ने ते कित्थों आए। माता दी उदर अग्नि अते पिता दे बिंब विचों उपजिया जीव किस मकसद लई रचया गया, इस सारी रचना दे रचायता दी अजीब ही सोच है अते मौज है। इस मनुखी जामे तो पहला रुखां बिरखां पशुओं दियां जोनियां भी उसे दी उपज है, कदे सप्पां कदे पंखियां दी जून। कुकर्म करन वाले जीव तंदियां विच गलतान ने, इना सबना नू आप प्रभु ही देख रहा है, उस तो कोई ओला नहीं। तीर्थां दे कंडे खंड ब्रह्मांड ये सब कुछ दृष्टमान है। जेकर व्यापारी दी न्याई लेखा जोखा किता जाए तां इस वणज दा वणजारा दिल विच ही महसूस कर रहा है। गल की जिन्ना सागर विच नीर है उतने ही औगणा नाल भरिया होया साडा मन है। हे प्रभु आप ही दया करके कृपा करो ते इस डुबदे हुए पत्थर नू तारो। मेरा हिरदा विकारां दी अग्नि नाल तप रहा है ते मेरे अंदर तृष्णा रूपी फट पौण वाली कटार चल रही है। पर नम्रता सहित बेनती है कि जिहड़ा मनुख रब्बी रजा नू पछाण लैंदा है उसके अंदर हर वक्त आत्मिक आनंद बनिया रहिंदा है। राग गौड़ी चेती विच बाबा नानक जी का फरमान है, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औ

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द का गायन किया भाई तरलोचन सिंह ते उनां दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु की उस्तत करन लई जीव की बुद्धि तुच्छ प्रतीत हुंदी है, उस तों तां बलिहारे ही जाया जा सकता है। सोरठ राग विच उचारित शब्द विच पंचम गुरदेव फरमान करदे ने कि मैनू वड्डे भागां नाल पूरा सच्चा गुरु मिल गया है ते मेरा मन रोशन हो गया है। उस वर्गा होर कोई नहीं है, इस करके मैनू तां उसे ते ही भरोसा है। मैं अपने सच्चे गुरु तों वारने हाँ, जिस दे मिलाप सदका मैनू लोक परलोक दे सुख अते आत्मिक आनंद दी प्राप्ति हुई है। करण करावण हार स्वामी घट घट की जानन वाला है, प्रभु ही मेरा साई है। उसकी चरण शरण प्राप्त करके निर्भयता प्राप्त हो गई है ते उसका नाम ही जीवन का आधार है। काल के प्रभाव तो मुक्त प्रभु के दर्शन ही सकारथ हैं। जो प्रभु अज भी है, पहला भी सी ते भविख विच भी होएगा। उही अपनी प्रीत दे रंगा विच रंग के अपने प्यारे जना नू गल नाल लाई रखदा है। उस वड्डे प्रभु दियां वड्याईयां भी अणगिणत हन अते शोभा भी हैरान कर देण वाली है। उसे ने ही मेरे सारे कारज रास कर दिते हन। ऐसे पूरन गुरु दा मिलाप मैनू प्राप्त हो गया है। इस प्रीत मिलनी सदका मेरे सारे दुख बिनस गए हन। अपने सतगुर कै बलिहारै आगै सुख पाछै सुख सहजा, कर आनंद हमारै। सरवण करदिआं इस शब्द दा कीर्तन भाई हरजिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे पास।

0: अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: ये पावन शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया होया राग सोरठ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 609 उपर सुवायमान है। इस पवित्र शब्द की विचार इस प्रकार है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज असां संसारी जीवां नूं समझाउंदे हन कि मैनूं वड्डी किस्मत नाल कामल भाव पूरा गुरु मिल गया है। सतगुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे मन विच आत्मक जीवन जीवन दी सोझी पैदा हो गई है। मैनूं हुण अपने मालक प्रभु जी दा सहारा मिल गया है। जिस सब दे मालक प्रभु जी दी कोई भी जीव बराबरी नहीं कर सकता। इस परथाए शब्द दे आरंभ दे बचन सतगुरु अलाउंदे हन। गुर पूरा भेटियो वडभागी मने पया परगासा कोई न पहुंचण हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। कल सहार पठ धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी की उस्तत करदे हां बचन करदे हन कि धन गुरु अंगद देव जी जिस मनुख उत्ते अपनी कृपा दृष्टि करदे हन उसनों आत्मक जीवन जीवन का सलीका बख्शते हैं। उस दे सारे पाप ते पापा की सारी मैल दूर कर देंदे हन। अते काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये सारे उस दे काबू विच कर देंदे हन। गुरु अंगद देव जी दे मन विच सदा आत्मक सुख वस रहा है, जिस दे कारण

0: गुरु संसार दा दुख दूर करदा है, गुरु नौ निधियां दा दरियाओ है, गुरु असां संसारी जीवां दे जन्मां जन्मां दे माड़े कर्मां दी मैल कालख धो देंदा। ऐसे गुरु अंगद देव जी नूं दिन रात आत्मक अडोलता अते प्रेम विच टिक के सेवना चाहिदा है। ऐसे सतगुरु दा दर्शन कीतियां जन्म मरण दा दुख कटिया जांदा है। भट्ट जी इस प्रथाए बचन करदे हन, अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल, सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै, गुर नाम नि दरियाओ जन्म हम कालख तोवै, सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाए। विचार अधीन शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी फुरमाउंदे हन कि मैं अपने ऐसे गुरु जी तों कुर्बान जांदा हाँ जिस पूरे गुरु जी की कृपा नाल मेरे हिरदे रूपी घर विच आत्मक आनंद बनिया रहिंदा है। इस लोक विच भी आत्मक अडोलता दा सुख मैनू प्राप्त हो गया, अते प्रलोक विच भी ये आत्मक आनंद बनिया रहन वाला है। अपने सतगुर कह बलहारै, आगै सुख पाछै सुख सहजा, कर आनंद हमारे रहो। विचार अधीन शब्द विच गुरु पंजवें पातशाह बचन करदे हन कि ओ परमात्मा परमेश्वर ऊपर मैनू निश्चा हो गया है, जो सारी सृष्टि का सिरजनहार है, सब जीवां दे दिलां दी जानण वाला अंतरजामी है, उही परमात्मा मेरे सिर उत्ते राखा है। जदों तो मैं सतगुरु की शरण पैके गुरु जी की चरणी लगा हाँ, उदों तो मैनू प्रभु जी दे नाम का आसरा मिल गया है। परमेश्वर दे नाम का आसरा मिल जाने की बरकत नाल हुण मैनू कोई किसी भी किस्म का डर नहीं सताउंदा। गुरुदेव शब्द दे दूजे पद विच बचन उचारण करदे हन, अंतरजामी करना हारा सोई खसम हमारा, निरभउ भए गुर चरनी लागे इक राम नाम आधारा। गुरु जी की कृपा नाल मैनू उस अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर ते ऐसा यकीन बन गया है, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर दा दर्शन मनुखा जन्म दा फल देन वाला है, जिस प्रभु दी परम हस्ती मौत तो रहत है, ओ परमात्मा इस समय भी मेरे सिर उत्ते मौजूद है अते सदा ही कैम रहन वाला है। ओ प्रभु जिन्ना सेवकां ते नदरे कर्म करदा है उन्हां नूं अपनी प्रीत दी दात अपने प्यार दी दात दे के अपने प्यारे सेवकां नूं अपने गल नाल ला के रखदा है। गुरवाक है सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है पी होवन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। मेरे गुरु दी वड्याई बहुत महान है, मेरा सतगुरु बड़ी वड्डी वड्याई वाला है, उस दी शोभा भी बड़ी अचरज है, वो अचरज शोभा वाला है। उस दी शरण पैन नाल मनुखा जिंदगी दा असल मनोरथ प्राप्त हो जांदा है। मैनू नानक नूं पूरा गुरु मिल पिया है, पूरे गुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे सारे दुख दूर हो गए हन। इस प्रथाए गुरवाक है वड्डी वड्याई आचरज शोभा कारज आया रासे, नानक को गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे।
1: अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी जसबीर सिंह।

ईश्वर प्रभु तो बलिहारे जान दी बात साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सोरठ राग विच उचारित शब्द विच करदे ने कि मेरी सोने लाल प्रभु नाल प्रीत स्थापित हो गई है। इस प्रीत दी डोरी प्रभु दे हथ विच इस कदर है कि ए प्रीत धागा ना तोड़िया टुटदा है ते ना ही हथों छुटदा है। दिन रात हर वक्त मेरे मन विच वसण वाले प्रभु तू मेरे ते अपनी मेहर करी। मैं तां उस सांवल सुंदर प्रभु दी अकै वड्याई सुन के उस तो वारने बलिहारने जानी आ। हे प्रभु मैं तेरे दासां दा दास अखवांदा होया बेनती करदा हाँ कि हे ठाकुर प्रभु मेरे ते इंज ही कृपा करदे रहो क्योंकि मेरी तहे लालन प्रभु तेरे नाल ही प्रीत बन गई है। मूह लालन स्यो प्रीत बनी तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै ऐसी माधो खिंच तनी। इस शब्द का गायन कीता है आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

प्रीत बनी तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी। इस शब्द गायन की तसी आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पे आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले

0: मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6:05 ਤੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

हुन तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। आज इस विच काम दियां गल्लां ते निम आधारित कोल बारे डॉक्टर RS चंदी नाल हुई गलबात सुनोगे। 7 बजे किसान वाणी प्रायोजित प्रोग्राम च अज दे सिलसिले होणगे किसान संदेश, किसान समाचार, मंडिया दे भा, सफल किसान यादविंदर सिंह, हल्दी दी काश्त ते मौसम दा हाल। सत बज के 40 मिनट दे अंग्रेजी वार्ता प्रोग्राम च डॉक्टर आशमीन कौर दी वार्ता सुनोगे सुसाइड अमंगस्ट स्टूडेंट्स causes and prevention। रात 8 बजे पेश करांगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे स्पॉट लाइट प्रोग्राम तुसे सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 बजे खेड संसार प्रोग्राम च पद्मश्री बहादुर सिंह ते फीचर सुनोगे। रात 10 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा। दस बज के 2 मिनट शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम सुर साधना च पंडित शिव कुमार दा संतूर ते वजाया राग सोहनी सुनोगे। रात 10:30 बजे पेश करांगे प्रोग्राम सरगम। रात 11:10 प्रोग्राम सौगात पेश किया जाएगा DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते जलंधर केंद्र तो। सो ACG अज प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा।

0: www.radiomirchi.gov.in.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाने की गलत नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ये ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
3: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, हुण सुनते हैं देश गान।

0: नमस्कार ए आकाशवाणी हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले बुलेटिन दियां खास खबरां। देश विच सोने दियां फसलां हेठ बीजा गया कुल रकबा 1086 लख हैक्टेयर तो वध हो गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ते सूबे विच नशियां दी अलामत नूं काबू करन अते इस दे खात्मे लई ठोस कारवाई ना करन दा इल्जाम लाया है। पंजाब पुलिस ने आज उत्तरी खेतरी पुलिस तालमेल कमेटी NRPCC दी 10वीं मीटिंग की थी। पंजाब भर विच स्वच्छता मुहिम 2.0 नूं 12 सितंबर तक वधाया गया ते भारत ने अहमदाबाद विच विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज दे तीजे पड़ा च अज आखिरी दिन मर्दां दी टीम मुकाबले विच 2 सोने दे ते औरतां दे रिकर्व वर्ग विच 1 चांदी दा तमगा जित्तिया है। हुण खबरां विस्तार नाल। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय ने दस्सिया है कि 4 सितंबर तक देश विच सौणी दियां फसलां हेठ बीजा गया कुल रकबा 1086 लख हैक्टेयर तो वध हो गया है। मंत्रालय ने दस्सिया है कि झोने दी काश्त 421 लख हैक्टेयर तो वध रकबे विच जदों कि दालां दी काश्त 117 लख हैक्टेयर तो वध रकबे विच कीती गई है। मंत्रालय मुताबिक कणक अते मोटे अनाज दी काश्त 181 लख हैक्टेयर तो वध रकबे विच कीती गई है। इस तों इलावा तेली बीजा दी काश्त 191 लख हैक्टेयर तो वध रकबे विच पहुंच गई है। मंत्रालय ने भी दस्सिया कि कपाह दी काश्त 109 लख हैक्टेयर तो वध रकबे विच जदों कि गन्ने दी काश्त 58 लख हैक्टेयर तो वध रकबे विच कीती गई है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ते सूबे विच नशियां दी अलामत नूं काबू करन अते इस दे खात्मे लई ठोस कारवाई ना करन दा इल्जाम लाया है। नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिया भाजपा बुलारी गौरव भाटिया ने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की निगरानी हेठ नशियां दा गठजोड़ वध फुल रहा है, पर फिर भी इस नूं रोकण लई अते ड्रग माफिया विरुद्ध कोई कारवाई नहीं की गई। श्री भाटिया ने संगरूर जिले विच वापरी घटना का भी जिक्र किया जदों एक निवासी ने पंजाब दे मंत्री हरपाल सिंह चीमा नूं नशियां दी दुरवरतों विरुद्ध कार्रवाई करन दी बेनती कीती, पर उन्हां नूं कथित तौर ते कुछ आप आगुआं ने धमकी दित्ती अते मंत्री तों माफी मंगण लई कहा ते बाद विच उन्हां ने खुदकुशी कर ली। श्री भाटिया ने नशियां दी दुरवरतों विरुद्ध कार्रवाई करन विच नाकामयाब रहण लई मुख्यमंत्री भगवंत मान तों अस्तीफा मंगिया। उन्हां भी कहा कि पंजाब दे मंत्री श्री चीमा नूं भी अस्तीफा देना चाहीदा है तां जो घटना दी निरपक्ष जांच यकीनी बनाई जा सके।
1: किस तरह से पंजाब में सरकार ये वादा करके आई थी कि नशा खत्म कर देंगे पंजाब से, आज वो ड्रग माफियाओं द्वारा चलाई जा रही है ड्रग्स का, नशीले पदार्थों का। उसके बाद दूसरा मुद्दा है कि जहां नागरिक अपनी आवाज उठाता है, सरकार से सवाल पूछता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, धमकी दी जाती है, वो दिन दूर नहीं है जनता सबक सिखाएगी, इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
0: आज चंडीगढ़ विच भी आम आदमी पार्टी सरकार विरुद्ध सूबे भर तो आए कांग्रेसी वर्करा ने विरोध मुजहरा किया। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग की अगुवाई विच पार्टी वर्कर पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर इकट्ठे हुए ते मुख्यमंत्री की रिहायश का घिराव करने लई मार्च किया। हालांकि वड्डी पुलिस टुकड़ी ने उन्हां नूं रोक दिता। पंजाब कांग्रेस प्रधान ने देर बाद एक व्यक्ति की कथित खुदकुशी लई सूबे के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा नूं जिम्मेवार ठहराया ते उन्हां दी तुरंत बर्खास्तगी अते गिरफ्तारी की मांग की। उन्हां शेरगांव पिंड के एक व्यक्ति विरुद्ध पुलिस बेरहमी का भी जिक्र किया। पंजाब के खजाना योजना आबकारी कर मंत्री हरपाल

0: कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर आकाश बांसल ने दस कि आपदा समय प्रबंध बारे राष्ट्रीय अथॉरिटी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2027 ऑनलाइन अर्जियां की मांग की जो कि आपदा समय प्रबंध के खेत्र में शानदार योगदान मानता दिंदी है। भारत ने अहमदाबाद विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीजे पड़ाव में शानदार कारगुजारी दिखांदिया अज आखिरी दिन मर्दां दे टीम मुकाबलों में दो सोने दे अते औरतां दे रिकव वर्क विच एक चांदी दा तमगा हासिल कीता है। आखिर च खास खबरां देश विच सौणी दीआं फसलां हेठ बीजिया गया कुल रकबा 1,086 लाख हैक्टेयर तो वध हो गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार से सूबे विच नशे की अलामत को काबू करने और इसके खात्मे लिए ठोस कार्रवाई न करने का इल्जाम लाया है। पंजाब पुलिस ने आज उत्तरी खेतरी पुलिस तालमेल कमेटी NRPCC की 10वीं मीटिंग की थी। पंजाब भर में स्वच्छता मुहिम 2.0 को 12 सितंबर तक बढ़ाया गया। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होगा। नमस्कार।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वे 6:30 बजे ने हम पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: प्रधानमंत्री ने किया कि ये संभावना दे दायरे नु वधा रहे है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है। ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण है, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है, पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं, और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है।
0: पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा विच 35,000 करोड़ रुपए दे वख-वख विकास प्रोजेक्टा दा उद्घाटन कीता ते नींह पत्थर रख्या। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी खेतर समर्पित माल ढोआ ढुआई लांघे WDFC दे 3 प्रमुख हिस्से राष्ट्र नूं समर्पित कीते, जिस नाल लांघे दे संचालन दा राह पदरा होया। इस मौके ते प्रधानमंत्री ने भारत दे आवाजाई ते लॉजिस्टिक्स खेतर विच तेजी नाल तब्दीली दा जिक्र कीता।
2: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12-13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन दौरान कई नेतावां नाल दुवल्ली गलबात करेंगे। विदेश मंत्रालय के बुलारे रणदीप जायसवाल ने आज नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग दौरान यह जानकारी दी। नेपाल में आए पुराना खड़ से बोलते हैं श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के लोगों और सरकार नाल एकजुटता और हमदर्दी प्रकट की है। श्री जायसवाल ने कहा कि हर प्रभावित नेपाल में हूं तक 7 जहाजों राही 95 टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है और कुछ होर राहत सामग्री जल्द ही भेजी जाएगी। तबाहकुन हड़ा च मारे गए भारतीय नागरिकों बारे उन्होंने कहा कि उन्होंने पहचान की कोशिशां जारी ने।
3: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई के मामलों में जो DNA की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी, और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: भारत चीन संबंधा बारे श्री जायसवाल ने कहा कि भारत चीन दरमियान संबंध हौली हौली उसारू दिशा वल वध रहे ने। उन्होंने कहा कि संबंधा का इस तरह साधारण होना लोगों नाल लोगों के संबंधा लिए बेहद अहम है। उन्होंने दसिया
3: 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति, और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और श्रीलंका के 3 दिन दौरे ते कोलंबो पहुंच गए ने। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों विचकार रक्षा ते समुद्री खेतर विच सहयोग नूं होर मजबूत करना है। श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री अरुणा जयासेकरा ते श्रीलंका विच भारत के हाई कमिश्नर संतोष शाह ने कोलंबो के भंडार नायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते श्री सिंह का स्वागत किया। श्री सिंह का श्रीलंका विच निघे रवायती ढंग नाल स्वागत तो बाद दोवां देशों विचकार लंबे समय तो चले आ रहे मजबूत संबंधों नूं दर्शांदा है। आपने दौरे दौरान श्री सिंह श्रीलंका की लीडरशिप नाल वख-वख मुद्दों ते गलबात करेंगे। इन्हां विच मुख तौर ते रक्षा ते समुद्री भाईवाली नूं मजबूत करना शामिल है। वो कोलंबो विच भारतीय भाईचारे के मैंबरां नाल भी मुलाकात करेंगे। श्री सिंह दे नाल रक्षा मंत्रालय ते विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों का एक उच्च पदरी वफद भी श्रीलंका गया है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @EIRRNU जलंधर। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ते सूबे विच नशियां दी अलामत नूं काबू करन ते इसदे खात्मे लई ठोस कार्रवाई ना करन दा इल्जाम लाया है। नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं भाजपा बुलारे गौरव भाटिया ने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवान मान दी निगरानी हेठ नशियां दा गठजोड़ वध फुल रहा है, पर फिर भी इसनूं रोकण लई अते ड्रग माफिया विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कीती गई। श्री भाटिया ने संगरूर जिले विच वापरी घटना दा भी जिक्र कीता, जदों एक निवासी ने पंजाब दे मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नशियां दी दुरवरतों विरुद्ध कार्रवाई करन दी बेनती कीती, पर उन्हां नूं कथित तौर ते कुझ आप आगुआं ने धमकी दित्ती अते मंत्री तों माफी मंगण लई कहा ते बाद विच उन्हां ने खुदकुशी कर ली। श्री भाटिया ने नशियां दी दुरवरतों विरुद्ध कार्रवाई करन विच नाकाम

हुण तुसी सुन रहे सी अनवर दी आवाज च गजल। असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 8 बज रहे ने। हुण पेश है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

प्यार परी गल, कदे बिना किसे मतलब कीती हुई मदद, ते कदे अपनी मेहनत दा मिलिया होया निक्का जिहा फल। यही पल जिंदगी नू खुशियां नाल भर दिंदे ने। खुशी दरअसल हालातां दी नहीं हुंदी, नज़रिए दी खूबसूरती है। जो दिल नू मिल जाए, ओही असल खुशी है।

0: आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। प्रोग्राम च वेला हो गया जी छोटे जिहे अंतराल दा, सो मुड़ वापिस आने हां इस अंतराल तो बाद।
1: सारिआं लई समाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: आज तक इस योजना नाल 9 करोड़ 50 लाख तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके हैं। कि तुसी भी 18 तो 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी लिए अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: हेलो,
6: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
7: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबन तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वालों का स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते। तुसी इस वेले सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन।

प्यार विच वादा करना सही है, पर वादा ओही होना चाहिदा है जिस नूं निभाउण दी सच्ची नीयत ते समर्था भी होवे। जिहड़ा वादा हालात बदलन दे बावजूद कायम रहे ओही प्यार दी असल पहचान हुंदा है। इसलिए प्यार विच वादे घट करो, पर जिहड़े वादे करो उन्हां नूं दिलों निभाओ भी।

0: जी हाँ, दिल दियां गल्लां हर किसी इंसान दे नाल नहीं कीतियां जा सकतियां। दिल दियां गल्लां सिर्फ उसे इंसान नाल ही असीं कर सकते हाँ जिहड़ा इंसान साडी खुशी विच खुश होवे, साडे दुख विच बिना किसी स्वार्थ तो साडे नाल खड़ा होवे। दिल दा दरवाज़ा सिर्फ उस इंसान लई ही खोलिया जांदा है जिहड़ा कि साडी खामोशी नूं पढ़ सके ते साडे भरोसे की कदर करे।
1: क्या कहा?

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बने।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
4: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे।

0: की एक रिपोर्ट।
1: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
2: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

असं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 9:30 बजे ने हुण पेश है प्रोग्राम खेड संसार। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुणोगे पद्म श्री बहादुर सिंह ते फीचर।

0: सिडनी विच वो ट्रायलां जिनी दूर थ्रो ना सुट सकिया, पर ओलंपिक खेडा चो वो नवा उत्साह लेके परतिया। 2002 विच बुसान दियां एशियाई खेडा च भाग लैण लई उहदी चोण फिर भारतीय टीम विच हो गई। उसका मुकाबला चीन, जापान ते ईरान दे तगड़े गोला सुटन वालियां नाल सी। बुसान विच उसने 19.3 मीटर दूर गोला सुट के सोने का तमगा जितया। भारतीय दल चों केवल उही इको एक पुरश अथलीट सी जो गोल्ड मैडल जित सकिया। सैफ खेडां विच उसने 19.15 मीटर दूर गोला सुट के नवा रिकॉर्ड कायम किया। ऑल इंडिया पुलिस खेडां विच उसने 12 गोल्ड मैडल जिते ते 19.40 मीटर तक गोला सुटिया। बहादुर सिंह की सब तो दूर थ्रो यूक्रेन कप विच लगी। उथे उसने 20.40 मीटर दूर गोला वगा मारिया। किसे समय भारत विच 20 मीटर की दूरी ते गोला सुटना असंभव मनिया जांदा सी, जिसनू बहादुर सिंह ने संभव बना दिता। 20 मीटर की हद वधाउण वाला वो पहला भारतीय सुटावा है। वो गोला सुटन की विशेष सिखलाई लैण लई यूक्रेन भी गया। यूक्रेन का गोला सुटावा विश्व चैंपियन सी। यूक्रेन विचली कारगुजारी ते ट्रायलां विच पार किए ओलंपिक मयार नूं मुख रखदिआं उसकी चोण एथन्स दियां ओलंपिक खेडां लई कीती गई। भारत के खेड प्रेमियों नूं आस सी कि उमर के 31वें साल विच वो 2004 दियां ओलंपिक खेडां विच अपने खेड जीवन की बेहतरीन थ्रो सुटेगा, पर वह अजिहा ना कर सकिया। उसके दसण मुताबिक गोले के सर्कल का फर्श वधेरे कूड़ा ते तिलकवां सी, पैर पूरी पकड़ विच नहीं सन आ रहे। बहादुर सिंह ने 21 मीटर दूर गोला सुटन लई ऑल आउट थ्रोआं कीतियां जो बदकिस्मती नाल फाउल हो गई। अजिही कारगुजारी उत्ते उसकी आलोचना भी हुई, पर उसका कहना सी कि पहला भी कई सुटाव्यां नाल अजिहा हुंदा रहा सी। डिस्कस का सुटावा बलकार सिंह टोक्यो दियां एशियाई खेडां दा चैंपियन हुंदिया जकार्ता दियां एशियाई खेडां समय अपनियां सारियां थ्रोज फाउल कर बैठिया सी। कदे कदे अजिहा कहिंदे कहाउंदे सुटाव्यां नाल हो ही जांदा है। एडे वड्डे मुकाबले विच सुटावे उत्ते मानसिक दबाव भी बहुत हुंदा है। गुरिंदरजीत सिंह एक अंतरराष्ट्रीय हैमर थ्रोअर ने ते पद्म श्री बहादुर सिंह की शख्सियत तो बहुत प्रभावित ने।
1: काफी मतलब उन्होंने सानू मोटीवेट किया, जिदा बाहर जाते उतों कोई नवी टेक्नीक कोई वेट ट्रेनिंग बारे ज होर डाइट बारे मतलब टाइम टू टाइम सानू जिदा उन्होंने जो भी लगभग असं कैंपा च भी कट्ठे रहे हैं काफी टाइम, जबकि मैं हैमर थ्रो करता सी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई बार उन्होंने राइड्स के दौरान सानू भी दसना भी तुम इस तरह करो तो तुम होर वधिया परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत वधिया जी उन्होंने मतलब स्पोर्ट्स लई काफ़ी देन दिती है और अज भी सानू आ गए टाइम टू टाइम सानू गाइड कर रहे हैं। मेहनत ही बहुत ज्यादा सके डिस्को पट जिस तरह टेक्नीक अजक चल रही है, वैसे टैक्निकली बहुत ज्यादा साउंड सके, मतलब उन्होंने डिस्कस भी काफ़ी वधिया की, लेकिन उस तो बाद मतलब गोलेबाज का बहुत ज्यादा जिस तरह जो शुरू किया फिर नहीं उन्होंने पिछले देखा और गोले के दिन ब दिन उन्होंने मतलब अगे तो अगे ही और इंडिया भी टॉप किया और अज मतलब जोड़े नवे बच्चे है उन्होंने भी असं हम दसते हैं मसाला देने उन्हों दी बहुत सोहनी उन्होंने स्पोर्ट्स की है जी। जिस तरह शक्ति सिंह जेडे जिन्होंने सारी दुनिया जानती है और एक अजीत भदूरिया से उस टाइम काफ़ी वधिया ग्रुप से उन्हों का, ये शक्ति सिंह भी पहले डिस्कस करते थे वो सेम ही इन्होंने पहले डिस्कस भी उन्होंने कंपीटिशन करते रहे और फिर गोले के भी इन्हों की लगभग उस टाइम कंपीटिशन देखने का अलग ही मजा आता है। जिस तरह ये ग्राउंड आएंगे से और सारी दुनिया मतलब उन्होंने हों हम बहादुर सिंह शक्ति सिंह का कंपीटिशन बेमिसाल ही कह सकते अपना जी, इस तरह का माहौल हों उस टाइम।
0: कुलविंदर सिंह चाल आप एक उगे शॉटपुट थ्रोअर ने ते बहादुर सिंह होरां तो बहुत प्रेरणा ले रहे ने।
2: सरदार बहादुर सिंह जी बहुत ज्यादा मेरे तो बहुत सीनियर सी प्लेयर ने ते मैं उन्होंने कैंप च रहा, जबकि जो उन्होंने शिक्षा मिलती है जिन्हें भी उन्होंने स्पोर्ट्स की है ज्यादा अचीवमेंट उन्होंने इंडिया तो बाहर जाके की है। जो भी जाते रहे ने बाहर सानू जो भी देखते प्रैक्टिस करते तो हरेक टैक्नीक बारे बाहरों कोई गलबात होंगी वो दसते सानू आके कोचा बारे दसते तो इदा ट्रेनिंग करो कोई भी गलबात होनी बाहर साढ़े आके डिस्कस करना बहुत उन्होंने जूनियर से जो उन्होंने असं देखते होंगे से अभी तो अपने आप में एक सुपना मानते होंगे भी सारे बहादुर सिंह जी सा शक्ति सिंह इन्होंने बराबर असं खड़े हैं इन्होंने कंपीटिशन कंपीटिशन लड़ रहे हैं बहुत ज्यादा मतलब अपने आप में लगता होंगे जिदा असं अपने आप बच्चे समझते थे तो बहुत बड़े फजीक देते तो सू लगता हूँ भी यह आने वाले ओलंपियन ओलंपिक गोल्ड मैडल लैणगे एशियन गोल्ड मैडल लैणगे मतलब देख के रूह खुश हो जाती थी इन्हें ज्यादा सोहनी फजीक होंगी सी तो प्रैक्टिस करने बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्कर से तो जो भी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अच्छे थक जाते कदम थकने वाले नहीं सके हर टाइम प्रैक्टिस दल जो भी गलबात करनी हरेक तरह की मतलब

0: ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੀਚਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1: नमस्कार, यह भारत के दूर संचार नियामक की अधिसूचना है। आपके फोन नंबर के असामान्य उपयोग के कारण आपकी सेवा 2 घंटे के बाद निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं। ग्राहक सेवा के लिए कृपया 0 दबाएं।
2: ना, कोई नंबर प्रेस ना करियो। ये ऑनलाइन ठगी का एक नवा तरीका है। ज्यों ही कोई नंबर प्रेस करोगे तो अपनी निजी जानकारी समेत अकाउंट डिटेल चोरी हो जाएगी। सावधान रहो, जागरूक बनो। वधेरे जानकारी ले 1930 नंबर डायल करो।
0: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार नाल अगे बढ़ रही है। उन्होंने मुंबई च ग्लोबल फिनटेक फीस्ट 2026 की शुरुआत की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत चीन दरमियान संबंध हौली हौली उसारो दिशा वल बढ़ रहे ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ते श्रीलंका दरमियान रक्षा अते समुद्री खेत्र विच सहयोग नूं होर मजबूत करन दे उद्देश दे नाल श्रीलंका दे 3 दिनां दौरे ते ने। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ते सूबे विच नशियां दी अलामत नूं काबू करन अते इस दे खात्मे लई ठोस कार्रवाई ना करन दा इल्जाम लगाया है। देश विच सौने दी फसलां हेठ बीजिया गया कुल रकबा 1,086 लाख हेक्टेयर तो वध हो गया है। खुराक अते जनतक वंड बारे विभाग अते भारतीय खुराक नियम ने अनाज प्रबंधन अते आधुनिकीकरण नूं तेज करन लई समझौते ते दस्तखत कीते। पंजाब पुलिस ने अज उत्तरी खेतरी

जी हाँ, आशा भोसले जी की वरेगंढ आज मनाई जा रही है। 1970 का दहाका आशा जी के करियर का बेहद चमकदार दौर सी। बहुत ही लाजवाब गीत, जी हाँ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दुनिया में लोगों को दम मारो दम, उन्होंने आवाज की रंगीनी ते रेंज का सबूत ने। पर आशा जी सिर्फ चंचल या कैपरे गीतों तक ही सीमित नहीं सन। उमरा जान विच दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के वर्गे गजल अंदाज गीता ने साबित कर दिता कि उन्हां दी आवाज विच नजाकत, दर्द ते शायरी दी डूंघाई भी बेमिसाल सी।

आशा भोसले जी ने भी तो वध भारतीय भाषावां विच 11,000 तो भी वध रिकॉर्ड कायम किए ते कई गीतां दा खजाना भी छटिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हां नूं सब तो वध रिकॉर्डिंगां करन वाली महिला कलाकार वजों दर्ज किया गया है। उन्हां नूं दादा साहेब फालके पुरस्कार, पद्म विभूषण समेत कई वड्डे सन्मान मिले। फिल्मफेयर विच उन्होंने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार 7 बार जीतया। 2001 विच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया। बाद के दहाकों विच उन्होंने नवी पीढ़ी के संगीतकारां दे नाल काम किया ते रंगीला का एक गीत एक मिसाल है।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ, 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर

0: हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
0: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce

0: होल्ड करना। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है जी
1: नमस्कार
0: प्रोग्राम
1: जी।
0: च। हेलो,
1: हेलो हेलो सर जी नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार
1: गुरदासपुर
0: जी, ते
1: तो
0: अपने बारे दस दो
1: गुरदासपुर
0: जनाब, कौन ते कित्थों जी?
1: तो जनक राज जी। सर
0: होर सुनाओ जनक राज जी, गीत केड़ा सुनाइए?
1: जी गाना सुना जो आपने मुस्ताना दा कुंडला तो खुश हो गई है।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।

अगली फरमाइश है जी, पिंड हरजी राम मलोड़ तो महेश गर्ग, सुशील गर्ग, जशन गर्ग, विनोद गर्ग, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रमापुरी ते आरएसपुरी, मुक्तसर तो बाबू सिंह तिमान, बलजिंदर कौर तिमान, रवनीत, नीशू ते भुपिंदर। फरमाइश इन्हां दी सतिंदर सरताज की आवाज़ च साई।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: सर, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस दो जी।
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार। ते अपने बारे दस दो कौन ते
1: मैं
0: कितो
1: कांत
0: जी।
1: कांत वर्मा बोल रही जी, हिमाचल प्रदेश सोलन शिमला कसौली। फरमाइश
0: ते फरमाइश भी दस दो जी अपनी।
1: सर जी, आप सुना दो, गुरदास मान जी की आवाज में सुना दो जी, मुड़ मुड़ यादस्तान दी पिंड दी गलियां दी।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।

0: हेलो।
1: हेलो भाजी, जय श्री राम।
0: जय सिया राम जी। कौन जी ते कितों जी?
1: तहसील जिला गुरदासपुर, ब्लाक दीना नगर, पिंड नहर पटवाया तो सुरजीत कुमार उर्फ तोती बोलता है।
0: क्या बात है तोती जी, ते गीत केड़ा जी?
1: तुहाडे नाल गल करके बड़ी खुशी होई सानू।
0: गीत केड़ा सुनाना जी?
1: गीत की कंग दिया बोलिया
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस्सो जी, आप कौन थे, कित्थों जी?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीरा मलोड़ तो बोल रहे हैं सर।
0: होर सुनाओ जी, की हाल चाल है?
1: बहुत वधिया
0: ते किहो जिहा बीतिया जी अज दा दिन जी?
1: सर, अच्छा दिन वधिया लंघ गया जी।
0: ते गीत दी फरमाइश भी दस दियो जी।
1: कल सुन जा बलोरी नैना वाली रंजीत बावा ते गुरले जाकर जी।

0: गुरलेज अख्तर ते रंजीत बावा। देख लैने जी, गीत नहीं होएगा तां तुहानू गुरलेज अख्तर दा गाया जरूर सुना देंगे। चेक कर लेने एक बारी, आपां
1: ठीक
0: करदे
1: है
0: की
1: गीत
0: हो
1: तो
0: जी,
1: हैगा ही, बाकी तुहानूं मिलदा जाना मतलब वक्री गल है।
0: करदे की हो जी।
1: मेरा इलेक्ट्रॉनिक का कम है जी।
0: ठीक है जी, रंजीत बाबा नहीं निकलिया जी, पर गुरलेज अख्तर दी आवाज़ से गबरूआ सुना देने हैं जी, ते जे
1: ठीक है
0: गीत मिल
1: सर,
0: गया ते ये भी जरूर सुना देंगे। तुहाडी फरमाइश दा फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद जी।
0: कुछ सुनेहे भी शामिल कर लेने जी। पुरानी मंडी मुल्लांपुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, अक्षम जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन ते नगीना जैन। पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक डींगरा, गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक ते मीका विरक, अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते पूरी वर्मा परिवार नज़दीक बस स्टैंड पिंड बुरज हनुमानगढ़ जिला फाजिलका तो, पिंड पक्खी खुरद फरीदकोट तो सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन ते पूरा गिल परिवार, गुरलेज अख्तर दी आवाज़ से गीत।

0: हेलो।
1: हेलो अश्विनी भाई, नमस्कार जी। अश्विनी
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: भाई बिट्टू मेरे दूर अश्विनी बैठे लंगूर सी जंदी अश्विनी भाई
0: होर सुनाओ बिट्टू जी, गर्मी घट रही है,
1: जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, थोड़ा मौसम चेंज होया था, पसीना
0: पसीना आना घट गया, हुमस घट गई है,
1: घट गया, फिर ठंडक महसूस होने चलती
0: ज्यादा दौड़ भज करो ते पसीना आ जाता, नहीं तो थोड़ पखे
1: होंगी।
0: की हवा भी ठंडक देंदी है।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत फर्क पे आकर रहे जी।
0: ते फरमाइश दस दियो जी, गीत केड़ा जी?
1: ओके
0: जरूर सुनावांगे जी, फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: जी बाय।

0: प्रोग्राम दी अगली पेशकश पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो सरदार मलकीत सिंह कुड़ियाना मनजीत कौर बठिंडा दीपिंदर सिंह इन्हों का पोता गुरशबद सिंह जीत सिंह कुड़ियाना हैलो
1: नमस्कार सर जी
0: नमस्कार जी ते अपने बारे दस दो जी कौन ते कित्थों जी
1: प्रेम कुमार रहेजा सरंदी बाजार पटियाला तो बोल रहे
0: क्या बात है जी ते फरमाइश भी दस दो जी रहेजा जी
1: फरमाइश तुहाडी इच्छा दी है जी
0: हां जी
1: फरमाइश तुहाडी मर्जी दा है जी
0: क्या बात है जी फिर सरदूल सिकंदर दा गाया सुनाने एक चरखा गली दे विच डालिया
1: हां ए भी बहुत वधिया मैं एसएमएस कीता सी जी ओ चक्के नहीं
0: ते फरमाइश तुहाडी सुनान लगे हैं जी गलबात हो गई जी
1: ठीक है जी
0: फोन करने लई शुक्रिया जी
1: मेहरबानी जी

तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलु मह साका, साधन हेत इति जन करी, सीस दिया पर सी ना उच्चरी, तर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिरर न दिया। ए इलाही बोल साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वलों उचारे गए, जो आप जी दे पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा तर्म हेत कीते गए साके दा चित्रण करदे ने। सम्मत 1678 बिक्रमी नू पिता साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे गृह विखे माता नानकी जी दी कुखों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अवतार तारिया। आप जी प्रभु भगति विच लीन रहिंदे सन। आप जी दे जन्म वेले ही ए बचन उचारे गए, प्रगट पए गुर तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै तापी चादर। ते नाल ही आप जी बाबत ए भी फरमाया गया, तेग बहादुर चादर हिंद, दनिंद मनिंद पए अवतारे। आप जी ने बाणी राही मनुखता नू बहुमुल्य उपदेश बख्शे। आप जी द्वारा उचारे गए 59 शब्द अते 57 श्लोक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाए मान ने, जिन्हां दे भाव अत्यंत गहन अते अत्यंत विशाल ने। आप जी दी बाणी विच एक प्रभु दी सर्व व्यापकता अते संसार दी नाशवानता दे संदेश ने। आप महान योधे भी होए, आप त्यागी भी होए, आप जी ने अपना आप ही धर्म हित कुर्बान कर दिता। संवत 1732 बिक्रमी नू अपने अनन प्यारे सिखा भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी अते भाई दयाला जी की शहादत उपरंत आप जी भी अदुत्ती शहादत प्राप्त कर गए। ये धर्म हित एक अदुत्ती साका सी। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने होरना रागां तो इलावा राग जय जयवंती विच वी बाणी उचारी। आप जी मनुख मातर नू उस परम पिता परमेश्वर नू चेते रखण दी हिदायत करदे ने, ते इस कारज नू उत्तम कारज बयान करदे ने। आप जी फरमाउंदे ने कि ऐ मनुख, माया दे संग नू त्याग के प्रभु दी शरण लोच, प्रभु दी शरण लग जा। जगत दे सुखां दा माण ना कर, इस सुख झूठे ने, इस सब झूठ दा पसारा है। इस मुच्चा संसार, इस मुच्चा जगत झूठ दा पसारा है। तू उस प्रभु दा सिमरन कर, उस राम दा सिमरन कर, यही तेरा मुख कारज है। राम सिमर, राम सिमर, यह तेरा काज है। माया को संग त्याग, प्रभजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। सिरवण करदे हां भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गाया होया ए शब्द।

राम सिमर राम सिमर, यह तेरा काज है। माया को संग त्याग, प्रभजु की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरजिंदर सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जय जयवंती च उचारित एक होर शब्द विच, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1352 ते सुभाए मान है, आप जी फरमाउंदे ने कि ऐ प्राणी उस प्रभु दे नाम दी भजन बंदगी कर। ए मनुखा जन्म

इद्दा जा रहा है। ए मन, तेनु बार बार की कहा जाए, तू समझदा क्यों नहीं? ए मूरख मन, ए तन बिनसद्या समा नहीं लगना। जिस तरह पानी तो बनया बर्फ दा ओला थोड़ चिरा हुंदा है, तेरे शरीर दी गत भी यही होनी है। फरमान है, राम पज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार, समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार, उरे समगात है। श्रवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गाया।

0: राम पज जन्म सिरात है। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरचेतन सिंह।
1: जैजावंती महला नौवां। राम भज जन्म सिरात है, कहों कहां बार बार, समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार, ओरे सम गात है रहाओ। सगल भरम डार देहे, गोबिंद को नाम लेहे, अंत बार संग तेरे, एह एक जात है। बिखिया बिख ज्यों बिसार, प्रभ को जस हीए तार, नानक जन कह पुकार, अवसर बिहात है।

सुशोभित है। इस धर्महेत साके दा वृतांत साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बचित्र नाटक विच करदे ने। तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। सरवण करदे आ भाई दविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जथे द्वारा गायन कीता होया ए शब्द।

तिलक जन्यु राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलु महसा का। इस शब्द का गायन कीता सी भाई दविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नानकपता पुखसलान सतनाम यादा सदा नंद रहे दिन राती गुणमतियां पाचार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार कड़ पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार

राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ मै संहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रोपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने वह लगा विसरिया करता किस नाल किचै दोस्ती सब जग चलन हार।

पीत बसन कुंद दसन प्रया सहित कंठ मार मुकट शीश मोर पंख चाहे जो बे वजीर बड़े तीर धर्म अलख गम खेल किया अपने उचाहे जियो कथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए सुत सिद्ध रूप धरियो साहन कैसा जियो सत साच श्रीनिवास आदि।

सतगुर गोबिंद जियो बलहा शलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल भवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मछ कछ हो ब्रहा जमुना का कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम तार ही ये तार तज विकार मन के अंध सत गुरु सत गुरु सत गुरु गोबिंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर के मान निज निदान सत जान मंत्र है निस्बस्तर होए कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो शार तो हो मैं का फंद काट सा संग्रह।

उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइया फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईया अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइया नाम निर्वाण निदान हर उर धरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइया नाम निर्वाण निदान हर उर धरो गुरु।

0: गुरमुख संगत सब विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: या खेल बड मेहल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाये परमारथ सत संगत सेती मन खचना। या खेल बड मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी।

परम पैपुले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

दर्शन परसया गुरु का जानम मरण दुख होवै सिफत खसामदी नूर अरसह कुरसह तुद डठे सचे पातशाह मल जानम जनम दी सजन सच्चा पातशाह सिरसा हांदे जिस पा

लोभ अहंकार की मति माया माही समाणी इनी वाती सह पाया नाही पई कामण यानी जाए पुछह सुहागणी वाह किन्नी वाती सह पाया जो किस करी सो भला कर मानिया हिकमत हुकम चुकाइया जाका प्रेम पदार्थ पाइया तौ चरणी चित लाइया सहु कहा सो कीजा तन मनो दीजा ऐसा परमल लाइया ईव कहे सुहागणी भैणे इन्नी बाती सह पाइया आप गवाइया ता सह पाइया और कैसी चतुराई सह नजर कर देखा सो दिन लेखा कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सास सुहागण नानक सा सबराई ऐसा रंग राती सहज किमती अहन सा भाई समाणी सुंदर साई स्वरूप विचखण कहिया सा

अनस पाई समाणी सुंदर साई स्वरूप विचखण कहिया सा सियाणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तिलंग महला पहला यानड़िए मानड़ा काए करे आपनड़ घर हर रंगो की ना माणे।

आई, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत,